0: إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
1: हवाओं की कसम जो नर्म नर्म चलती हैं फिर जोर पकड़कर झक्कड़ हो जाती हैं और बादलों को उभार कर उठा लाती हैं फिर उनको फाड़कर जुदा जुदा कर देती हैं फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं ताकि उज्र दूर कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए कि जिस फैसले का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा जब तारों की चमक जाती रहे और जब आसमान में शिगाफ पड़ जाए और जब पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएं और जब पैगंबरों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया जाए भला इन कामों में ताखीर किस लिए की गई फैसले के दिन के लिए और तुम्हें क्या खबर के फैसले का दिन क्या है उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी.
0: अलम नुहलिक الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This transact is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular. Mitiye jo
8: कहता है कि हाँ तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ उसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। तो ये हमारी जद्दोजहद और आज जो हमने पिटिशन दाखिल की है उसी जद्दोजहद का हिस्सा है।
9: पीटीआई वानी जी अस्पताल मुंतकली बारे हुकम की मुबैना वजगड़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराए छी। जिम्मेवार के तोहीन अदालत को जिम्मेवार करार दियण पीटीआई वानी के फौरी तौर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर संदस तिबी मायनो करण की इस्तदा उजैर भंडारी सलमान अक्रम राजा पारा दाखिल कल दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ कानून वाले वजीर आजम नजीर तारण सुद समा वाले वजीर अतौला तारण के धुर बढ़ाए वो दरख्वास्त में सजा कई वही है त अदालती हुकुम से अमल न कदड़ जिम्मेवार के जाती हैसियत में तलब पे वे खेन तुहीन अदालत को जिम्मेवार करार दई सदन खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कई वे।
10: जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ऑर्डर आया ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकतदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे जुमले कसते थे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब कंटेम्प्ट एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ। वो कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सियासत नहीं करेंगे फिर रस्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई बयानबाजी भी हुई रुकावट भी खड़ी की और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया तो ये वायलेशन और कंटेंप्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश पेशाश हैं।
9: वफाकी हुकूमत पीटीआई वानी जी अस्पताल मुंतकली बारे मामले ते तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के हुकमन की वजगड़ी को जिम्मेवार करार दई छो। वफाकी वजीर अतौला तारण प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है त शिफा इंटरनेशनल अस्पताल बहरा टोलन की सूरत में मानू जमा किया वह पीटीआई जब मानू सिक्योरिटी रिस्क बढ़ी वह तें करे वानी के पिम्स अस्पताल नियुक्त हो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जहां डॉक्टर्स मौजूद हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट सेहत मामले ते सियासत करण का मना न किया हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान दई अदालती हुकमन की भजकड़ी कई पी तो इन अदालत हुकूमत न पर पीटीआई बानी की भेण गर्भातियन पार्टी कई अदालती हुकमन से अमल कदे पीटीआई बानी जो तिबी मुआइनो कराए वो तिबी मुआइने वक्त पीटीआई बानी की भेण पिण मौजूद हुई सेहत के मामले के सियासत की वर न चढ़ वे। इस्लामाबाद इंतजामिया पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बाबत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ नजरसानी अपील जल्द बुधण लाय दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए छी। दरख्वास्त से पीटीआई बानी जटियाला जेल बानी के अस्पताल मुंतकली मेडिकल पैनल जरिए संदस इलाज करण वारा हुक्म चैलेंज किया गया है। पाकि हुकूमत रावलपिंडी में छह महीनों लाए फौज मुकर्र करण की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर्र करण की मंजूरी आईन के आर्टिकल 245 तहत दिनी वही पाक फौज टे कंपनियों छह महीनों तीन रावलपिंडी में मुकर्र हूंद जारी कल पधराई मूजिब फौज जिले इंतजामिया से गड अमन अमान की सूरतयाल बरकरार रखी शहर के सास हंधन अहम रोड रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के सहायतो बनाया वो फौज मुकर्री की मंजूरी बाद जे घरू खाते की दरख्वास्त दिनी वही। پاکستان نے ملیشیا جو دہشت گردی ملیشیا کی روک تھام انسانی اسمگلنگ خلاف وڈیل سہکار بدائن سے اتفاق صدر اسکری زرداری سے ملیشیا کے گھر وزیر سیف الدین بن اسماعیل کی ملاقات سیکورٹی کے شعبے میں سہکار بدائن سے بھی زور فرو ہو صدر اسکری زرداری پاکستان شین کی ملیشیا کی مارکیٹس تائیں پہنچ سے زور فریندے چھو تو ملیشیا میں چاور پٹاٹن کنک جانور کی خوراک کی طلب موجود ہے گھر وزیر محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود ہو وزیر اعظم شہباز شریف جو برسات نئے بوٹ دوران فوت تھی ویلن خاندان کی مدد ہے تباہ تھی ویل گھرن کی بیہر تعمیر جو حکم امکانی برسات نئے بوٹ کے نقصان بابت تھل اجلاس میں وزیر اعظم پارا بوٹ متاثر علاقوں میں بجلی روڈ رستن کی بحالی لائے بھی قدم کرنے کی ہدایت وزیر اعظم کے بریفنگ میں بدایا ویو تو ملک کے متاثر علاقوں میں بوٹ متاثر کے محفوظ ہندن ڈاں منتقل کیا پی وے برسات امکانی بوٹ سبب این ڈی ایم اے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی جو ٹیموں مدد لائے تیار ہیں سندھ ویدر سدھو دریا کے پانی وسیلا نئے این ایف سی ایوارڈ میں سندھ کے حصے میں مبینہ کٹوتی خلاف حیدرآباد میں ویدر سندھ مارچ سندھ ایکشن کمیٹی کے سٹے پوش محمد سیٹی فلائی اوور کا واتو واگ گیٹ تین مارچ کرے قومی شاہراہ سے دھرنو ہنو ہو مختلف قوم پرست دھرین سیاسی پارٹین کے اغوان ٹوڑی کارکنن وکیل سول سوسائٹی کے نمائندن شہری کی وڈے انگ میں شرکت اغوان ہے تو سندھ کے پانی سے دھاڑو ہنی زمینوں بنجر بڑھائیں پی ون سندھو دریا کے نون کینال ڈیمن کی تعمیر کے کئی بھی صورت میں قبول نہ کیا ویسے سندھ کی زمین سے والا وسیل سے قبضے این ایف سی ایوارڈ میں کٹوتی خلاف جدوجہد جاری رکھی ویسے

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: Ek mazboot Pakistan ki buniyad hamare sehatmand bachche hain. Polio bachchon mein umar bhar ki mazoori ka sabab ban sakta hai, magar isse bachao mumkin hai. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकतदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ, वो कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सियासत नहीं करेंगे, फिर रस्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया, तो ये वायलेशंस और कंटेंप्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो बहुत शाश प्रशाश हैं।
1: वफाकी हुकूमत पीटीआई बानिया के अस्पताल मुंतकिली वे मामले से तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के हुकुम की भंजकड़ी को जिम्मेवार करार दई छो। वफाकी वजीर अताड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल बारा टोलन की सूरत में मानू जमा कया वाया। पीटीआई जा मानू सिक्योरिटी रिस्क नेशनल अस्पताल डॉक्टर मौजूद हुआ छा सुप्रीम कोर्ट सेहत मामले से सियासत करण का मन न कयो? प्रेस कॉन्फ्रेंस ए बयान दई अदालत हुकुम की भंजकड़ी कई वही तो इन अदालत हुकूमत न पर पीटीआई बानी की भेण घर बातिन पार्टी कई। अदालती हुकुम से अमल कंदे पीटीआई बानी जो तबी मुआयनो कराए वो तबई मुआयने बाद पीटीआई बानी की भेण पिण मौजूद हुई। सेहत के मामले के सियासत वर न चाढ़े वे। इस्लामाबाद इंतजामिया पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बाबा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ नजरसानी अपील जल्द बुझने लाय दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई छी। दरख्वास्त में पीटीआई बानी की अडियाला जेल में निजी अस्पताल मुंतकिल मेडिकल पैनल जरिए संदस इलाज कराने वा हुक्म चैलेंज कया वा। वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में छह महीनों लाय फौज मुकर करने की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी फौज मुकर करने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 तहत डिनी वही। पाक फौज जो टिन कंपनियों छह महीनों तक रावलपिंडी मुकर होंद। जारी कल पधराई मूजिब फौज जिले इंतजामिया से गड अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी। शहर के हसास हंधन आम रोडन रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के सरायतो बनाया वो। फौज मुकररी की मंजूरी पंजाब के घरू खाते की दरख्वास्त डी वही।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो त असा जे बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण सा बार जी इम्यूनिटी जका वा बेहतर थिए थी। हाणे जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जको पोलियो जो दींदासी उन में का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द जे वैक्सीन जका पंजे बार के करायो तो असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्द में जो महफूज रहे।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Aksar वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती है। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: अपना शहर अपना घर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई, पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज, उधरदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तवा के वैक्सीन जे लाए उम्र की हद कोने कैं जगह वैक्सीन कैं भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कैं उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो वधी का 10 साल के घट आ तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सभी के बूस्टर डोज लगराए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
5: तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, किसी ड्यूटी का मसला था. बिल्कुल ये गलत बात है. ऐसा कुछ भी नहीं था. एक गाड़ी जिसके गर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडियाला से गया शिफा इंटरनेशनल. कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था. लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर कैसी सुल्तान को लेकर गए और फिर उसको वापस भी आया काफिला. लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर से झूठा है कि हाँ, तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ. उसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे. तो ये हमारी जद्दोजहद और आज जो हमने पिटीशन दाखिल की है उसी जद्दोजहद का हिस्सा है.
6: पीटीआई बानिया जी अस्पताल मुंतकली वाले हुक्म की मुबैना भंजकड़ी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तोहनी अदालत दरख्वास्त दाखिल. उज़ैर भंडारी सलमान अकरम राजा पारां दाखिल कयल दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ऐं सुध समा वारे वज़ीर अता तारड़ खे धुर बणायो वियो. दरख्वास्त में ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ तोहीन अदालत कार्रवाई हलाइण. पीटीआई बानीअ खे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतक़िल करण ऐं संदसि तिबी मुआइनो कराइण जी इस्तदा. दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त अदालती हुकम ते अमल न कंदड़नि ज़िमेवारनि खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वञे ऐं खेनि तोहीन अदालत जो ज़िमेवार करार ॾेई संदनि ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे.

0: जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकतदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ, वो कंटेम्प्ट किसने किया?
1: Caltech's Havoline passenger car motor oil khareed ke jeeto guaranteed McDonald's voucher aur pao mauka grand prize jeetne ka. Motorcycle oil khareedne par bhi Caltech's Havoline de raha hai dheron exciting prizes jeetne ka mauka. Caltech's Havoline se sab jeetenge.

0: रुकावट भी खड़ी की और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया। तो ये वायलेशंस और कंटेंप्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश बशाश हैं।
1: वफाकी हुकूमत पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली वाले मामले ते तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भंजकड़ी से जिम्मेवार करार दई छो। वफाकी कंदे चयो आए त शिफा इंटरनेशनल अस्पताल बारा टोलन की सूरत में मानू जमा कया वया। पीटीआई जा मानू सिक्योरिटी रिस्क बणजी वया तें करे बानी के पिम्स अस्पताल नियो वयो। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल डॉक्टर्स मौजूद हुआ शाह सुप्रीम कोर्ट सेहत मामले ते सियासत करण का मना न कर प्रेस कॉन्फ्रेंस ए बयान दई अदालती हुक्म की भंजकड़ी कई वही। तो इन अदालत हुकूमत न पर पीटीआई बानी की भेण घर भातिन ए पार्टी कई। अदालती हुक्म से अमल कंदे पीटीआई बानी जो तिबी मुआयनो कराया वो। तिबी मुआयने वक्त पीटीआई बानी की भेण पिण मौजूद हुई। सेहत के मामले के सियासत वर न चाड़े वे। इस्लामाबाद इंतजामिया पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बाबा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ नजरसानी अपील जल्द बुधण लाए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई छी। दरख्वास्त में पीटीआई बानी की अडेला जेल में निजी अस्पताल मुंतकली मेडिकल पैनल जरिए संदस इलाज कराने वा हुक्म चैलेंज कया वया। वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में छहन महीन लाए फौज मुकर्र करण की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर्र करण की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 तहत डनी वही। पाक फौज जो टिन कंपनी छहन महीन तई रावलपिंडी मुकर्र हूंद। जारी कल पदराय मूजिब पाक फौज जिले इंतजामिया से गड अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी। शहर के सास हंधन ए आम रोडन रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के असरायतो बणायो वेंदो। फौज मुकररी की मंजूरी पंजाब के घरू खाते की दरख्वास्त डनी वही। पाकिस्तान ए मलेशिया जो दहशतगर्दी मंशा के रोकथाम ए इंसानी स्मगलिंग खिलाफ गडियल सहकार वधाइण ते इतफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के घरू वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात सिक्योरिटी के शोबे पाकिस्तान के मार्केट्स तई पहुंचाइण ते जोर भरीदे चयो त मलेशिया चांवर पटाटन कणक चांवरन की खुराक तलब मौजूद है। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो बरसात ए बोड मुतासर फौत थी वल खानदान के मदद ए तबाह थी वल घर की बीहर तमीर जो इम्कान। इम्कानी बरसात ए बोड के नुकसान बाबत थियल इजलास में वजीर आजम पारा बोड मुतासर इलाकन में बिजली रोड रस्तन की बहाली लाए भी कदम खण की हिदायत। वजीर आजम के ब्रीफिंग में बुधाया वो तो मुल्क के मुतासर इलाकन में बोर्ड मुतासर के महफूज हंधन डां मुंतकिल कयो पियो वञे।
2: वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके केएमसी हो चाहे आपकी डीएमसीज हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। एमक्यूएम की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाहें ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। जो पब्लिक पार्क थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख ले, सारे एमक्यूएम लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर तो कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
1: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमण है तो कराची के मसलन की जिम्मेवार एमक्यूएम आए। एक साजिश तहत हड़तालों करे सनतन के तबाह किया वो। मुस्तफा कमाल ए खालिद मकबूल सिद्दीकी के हड़ताल की हिमायत वाली वीडियो अज भी मौजूद आन। एक हड़ताल दौरान 30, 40 ए 50 तई लाशा खया वेंदा हुआ। कराची मीडिया से गालाइंदे शर्जील मेमण नफरत ई सियासत कंदड़ जमायतू पांजे ही सूबे थी। कराची जा मसला हल करण लाए मुसबित ए जिम्मेवार सियासत की जरूरत है। पीपी हमेशा कौमी मफाद के अवलियत डनी है। सिंध जहा मू बाशौर समझदार आन। ये दिसन पाया हर दुखे वक्त में केर साणन गड बेहे तो।

0: जमायत इस्लामीअ जा पेट्रोलियम लेवी ऐं महांगाई ख़िलाफ़ कराची, लाहौर, पिशावर में गवर्नर हाउस साम्हूं धरणा जारी। हाफिज़ नईम रहमान ख़िताब कंदे चयो आहे त हुकूमत पेट्रोलियम जे हर लीटर ते भतो उगाड़े रही आहे। इहे पाण टैक्स अदा न आहिनि कंदा ऐं ग़रीबनि ते बार विझंदा आहिनि। पेट्रोल महांगो थियण सां हर शइ महांगी, महांगाई सबबि माण्हुनि जे घरनि जा थी वञनि था। हुकुमरान हाणे आवाम जो वधीक मुआशी इस्तेहसाल नथा करे सघनि। जहिड़ो फायरिंग नौजवान कतुल कोटके में जाने हलंदड़ पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग नौजवान आसिफ अली जागीरानी मारिजी वियो। इतलाह ते पुलिस वाके वारे हंधु पहुची नौजवान जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। धुरन जे जहिड़े में हिन वक़्त ताईं 8 ॼणा कतुल थी चुका।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: हक़ सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
8: इम्कान मौसमियात खाते मूजिब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर में इंदड़ बिन डी ताई मौसम झुलारी रही। कोटड़ी जी में हथियार के जोर से फुर मज़ामत नौजवान कत्ल वारसन पारा लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाप वट हथियार बदन नाकाबंदी करे इंदड़ विंदड़ गाडियन का फुर कई। मज़ामत खेरपुर वासी फैसल भुट्टो मार वो संदस दोस्त जख्मी। वारसन पारा वाके वारे हंध लाश रखी धरणो रोड ब्लॉक कातिल फौरी तौर गिरफ्तार करण जो मुतालबो। पीर जो गोठ वेझो बिन धुरन में जेड़ो फायरिंग नौजवान कतुल कोट पुलवारे इलाके में जागीरानी बिरादरी के बिन धुरन में हलंदड़ पुराने तकरार तां जेड़ो थी पियो। फायरिंग के नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीरानी मार वो। इतलात पुलिस वाके वारे हंध पहुंची नौजवान जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। धुरन के जेड़े में इन वक्त ही 8 जणा कतुल थी चुका है। खोरवा लग मुर्गिन से भरल तेज रफ्तार गाड़ी धनार ए चैन ढगिन के चीबाटे मारे छो। बदीन सजावल रोड से हादसे में गोट मूसा चांडियो वासी अब्दुल फताह चांडियो हयाती विञाए वेठो। हादसे सबब चार ढगियों भी मरी वयू। ड्राइवर मौके तां फरार थी वो। पुलिस गाड़ी तवील में वठी छी। पोती जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कयो वयो। मड़ो घर पहुंचण ते कोहराम मची वियो। ऐं जरवार माइनर के मंगणहार पाड़े वटां 20 फुट घारो पानी घरन में दाखिल। इलाइके वासियुनि जो चवण आहे त आपाशी मलदारनि खे इतलाह ॾियण बावजूद हिन वक़्त ताईं केर बि न आहे पहुतो। घारो फौरी तौर बंदि कयो वञे।
9: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
10: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
11: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
12: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
13: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज़।
12: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।

0: सिंध आवाज नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। इट्स जैक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आप आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 साल ताई छोती दिनी वने ते जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगह ते वैक्सीन कैम उम्र ते पोलियो लगी सके तो कैम उम्र ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वजी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधो प्यार GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Urea Granular Mitti.
8: Taakat banji ubriyo je duniya ke hairan kare chadyo. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिब इसहाक़ डार बरतानवी परडे॒ही वज़ीरनि समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि में सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तान जो मामिलो उथारियो वेंदो। रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद में गुज़िरियल तेज़ बरसातुनि सबबि केतिरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। रोड रस्ता पाणी हेठि केतिरनि ई इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनून, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदीअ सबबि मौसम ख़ुशगवार। कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मलीर, आयशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफ़िक पुलिस मूजिब कराचीअ में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 306 हयाती विञाए वेठा, जॾहिं त 7,487 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफ़िक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंगु 184 आहे। कोटडीजीअ में हथियारनि जे ज़ोर ते फुर मज़ामत ते नौजवान क़तल, वारसनि पारां लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाप वटि हथियारबंद नाकाबंदी करे ईंदड़ वींदड़ गाॾियुनि खां फुर कई। मज़ामत ते खेरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मारिजी वियो, संदसि दोस्त ज़ख़्मी। वारसनि पारां वाके वारे हंधि लाश रखी धरणो। रोड ब्लॉक कातिलनि जी फौरी गिरफ़्तारी करण जो मुतालबो। प्रियालो भरिसां कारे इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारीअ पीउ सां क़तल। जवाबदार फरार ॻोठ इमाम बख़्श नारे जो में जवाबदार आशिक़ नारे जो पंहिंजे धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो। इतलाउ ते हद जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। पीर जो ॻोठ वेझो ॿिन धुरियुनि में जहिड़ो फायरिंग। नौजवान क़तल कोट पुल वारे इलाइक़े में जागीराणी बिरादरीअ जे ॿिन धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार सां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीराणी मारिजी वियो। इतलाउ ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। धुरियुनि में जहिड़े में हिन वक़्त ताईं 8 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि। सखर में गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल नारीअ जे वारसनि जो कातिलनि जे गिरफ़्तारीअ लाइ लाश रखी एहतिजाज। नारी साजिदा मीराणीअ जे वारसनि जवाबदारनि जे गिरफ़्तारीअ लाइ एहतिजाज कयो। वारसनि जो चवणु आहे त साजिदा मीराणीअ खे संदसि मुड़ुस अली हसन मीराणीअ क़तल कयो आहे। घरू अणत भरत तां जवाबदार असांजे नियाणीअ खे क़तल कयो आहे। पुलिस जवाबदारनि जी साथारी बणियल आहे। DIG सखर, SSP सखर नोटिस वठी कातिलनि जी गिरफ़्तारी करे। होरवा अलॻि मुर्गियुनि सां भरियल तेज़ रफ़्तार गाॾी धनार ऐं चइनि ढगनि खे चीभाटे मारे छॾियो। बदीन सजावल रोड ते हादसे में ॻोठ मूसा चांडियो वासी अब्दुल फताह चांडियो हयाती विञाए वेठो। हादसे सबबि 4 ढगियूं बि मरी वियूं। ड्राइवर मौके तां फरार थी वियो। पुलिस गाॾी तवील में वठी छॾी। फोतीअ जो लाश ज़रूरी कार्रवाईअ बाद वारसनि हवाले कयो वियो। मर्ड घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। ऐं जरवार माइनर खे मंगणहार पाड़े वटां 20 फुट घारो। पाणी घरनि में दाख़िल इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलदारनि खे इतलाह ॾियण बावजूद हिन वक़्त ताईं केर बि न आहे पहुतो। घारो फौरी तौर ते बंदि कयो वञे।
5: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
9: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए, उनन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
10: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर मान जो सवाल होता है
4: अपना शहर अपना घर मटियारी
5: FM 88 नेटवर्क

स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। हाँ जी जनाब, प्रोग्राम चलते का नाम मस्ती में तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फ्रॉम योर सेंटर इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान। नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सही, आपकी सिद्राओं के साथ मौजूद हूँ यहाँ पर। जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम तो लोग जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत उनके से ही आपकी हालत है। उम्मीद है जदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीन है आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे तीन बजे तक, यानी कि दो घंटे हमारे पास मौजूद होगा। इन दो घंटों में हम करने वाले हैं जी इतनी सारी बातें। तो इतनी सारी बातें वो तभी होंगी जब आपका साथ हमारे साथ मौजूद होगा। तो बिल्कुल जी, आपका साथ प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपकी वजह से हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। तो बिल्कुल जी, मेरे प्रोग्राम के चांद जरा हाजिर हो जाइए। आज बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यहाँ के फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियाए, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होटो 440 सौ की समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आगे मोटो पे 440 सौ की समय लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ, बहुत ही प्यारी सी नाद जनाब आप लोगों के लिए आगे से प्रोग्राम रखेंगे। और नाद के बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास आएंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जीएफएम 88.8 नेटवर्क प्रोग्राम चलती का नाम मस्ती।

0: जी वापस आ चुके हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं सल्टी के नाम मस्ती आके सिद्रा के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे जनाब, अपने होने का एहसास लाने वाले हैं, किस तरह से आप हमें ज्वाइन करेंगे बिल्कुल बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, सबसे पहले जो बात बताने वाली है वो बिल्कुल यही है, तो वही बता दें। तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि अगर वाईफाई पासवर्ड जो है वो फीलिंग से डिसाइड होता तो आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। बहुत से लोगों की फीलिंग्स अजीब अजीब होती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सैड होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी टाइप के होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर पासवर्ड जो है वाईफाई का वो फीलिंग्स से डिसाइड होता, यानी कि खुद ही पासवर्ड लग जाता आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड, तो आप बताइए आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। और किसी दिन आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, क्या कीजिए, LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8812। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जनाब, पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहां से ज्वाइन कर चुके हैं ये भी बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप हाँ जी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ पासवर्ड के बारे में मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया क्योंकि बहुत से लोगों के पासवर्ड आज मैं जानूंगी वैसे तो कुछ लोगों के वाईफाई के पासवर्ड जो होते हैं ना वो बताने ही नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फिर समझ चुके होंगे गरीब आवाम आ जाती है। तो आज आप मुझे ये बताएंगे कि अगर वाईफाई पासवर्ड जो है वो फीलिंग से डिसाइड होता तो आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। और इसी के साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, बिल्कुल जी आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। और देखा जाए तो सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं यहाँ पर हैप्पी। हैप्पी कहती है अस्सलाम वालेकुम मार्जा सदरा जानी, कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है, खैर से आ गई इस शो में, वेलकम टू शो जाना, आपको भी वेलकम कहते हैं हैप्पी गर्ल। और हाली सुल्तान हमारे साथ हैं, हाली सुल्तान हेलो कहती, हेलो मुर्शिद, हेलो हेलो। और हाले सुल्तान कहती है हेलो वालेकुम अस्सलाम मुर्शिद सिद्रा, कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं हाले सुल्तान। और नखा अलावा हमारे साथ है यहाँ पर जी, हिदायतुल अहमदानी कहते हैं सलाम कैसी हो सिद्रा, बिजली नहीं आई, मोबाइल चार्ज नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुन लेंगे प्रोग्राम आपका, चलें कोई बात नहीं। और अखलाक बलूच हमारे साथ मौजूद ही कहते नाइस यो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। हैप्पी कहते हैं जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये हमारे साथ ही आरडी किंग, वफा की आस रख के सजा हमने ही पाई, अब चलो बेवफा बनकर ये दुनिया छोड़ देते हैं। खटरी से राशिद अली मरी, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बतें कि आप तारीफें कर देते हैं। उनके अलावा हमारे साथ ही चाचा खालिद और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्रा मुस्कान कैसे हैं, और मैं ठीक हूँ आप बताएं चाचा कैसे हैं, कहते हैं ट्विंकल 10 है हमारा पासवर्ड वाईफाई का, योर टॉपिक है नहीं नहीं जब फीलिंग से डिसाइड हो जाता, यानी कि आपकी फीलिंग्स कैसी होते हैं, आपका मूड कैसा होता है, अगर उस हिसाब से पासवर्ड डिसाइड हो जाता, खुद ही वो पासवर्ड लग जाता तो आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। और ये ट्विंकल ट्विंकल क्यों लगाया है पासवर्ड जरा बताएं। अच्छा उनके अलावा हमारे साथ ये मौजूद है आशिक अली मल्हा फ्रॉम बकड़ अबरो से, कहते हैं सलाम पाजी आप कैसी हैं, मुमताज मोलाय का सॉन्ग सुनाना ही मोहब्बत बिया। अच्छा ये तो वहां गानों लिखियो आए, ठीक है ठीक है। ये चौथा डेडिकेट ताले बुगियो और चन्ना अली आजम अबड़ो गुलाम मुस्तफा अबड़ो जिनाली, चलिए ठीक है सबने भांजू फरमाइशों हलाइंदासी। और ये हमारे साथी वालेकुम असलम छोकरी सिद्रा मुस्कान केड़ा हाल आयन, फुलजी स्टेशन का फौजी पठान हमारे साथ है, छोकरी सिद्रा सैया ताम उदाय की आयो, ठीक ठाक आयो प्यारा भाव। और दिया हमारे साथ है, दिया काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में, मेरी अस्सलाम वालेकुम बाजी कैसी है, बाजी की जान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसी है, ठीक ठाक है। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और हाले सुल्तान कहती है मुर्शिद मेरी वाईफाई का पासवर्ड है क्रेजी फीलिंग। अच्छा रियल वाले पासवर्ड बता रहे हैं क्या आप मुझे, ऐसा ना हो आपके आसपास ट्रेनिंग वाले लोग सुन ले और फिर वही हो जाए जो हम सोच रहे हैं। चलें जी और जी प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो पूरी 3 बजे तक का होगा। और इसके साथ साथ आप मुझे ज्वाइन करेंगे 888 और फेसबुक पे. फेसबुक वाली ऑडियंस जो है काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें. और इसी के साथ साथ टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास. तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना, सुनते रहिए और हमारे साथ इसलिए पूरे पूरे 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. 88 नेट पर आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. उदंदा रहो, उदंदा रहो.
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं. पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं. ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है. मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे. मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे.
5: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर नोरो मिर्पू खास मटियारी सकरन मेहरापुर माती और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चुलती के नाम से। और इसी के साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद है जनाब समान के लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है। सवाल कुछ ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर वाईफाई पासवर्ड फिलिंग से डिसाइड होता तो आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। इसी के साथ साथ बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है जिसके ऊपर आप लोगों के मैसेजेस चाहिए मुझे बहुत ज्यादा वाले। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, फेसबुक पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सके और हम खूब सारे मजे कर सके।

आप बात करने के साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मैसेजेस हैं जो जाहिर सी बात है शामिल प्रोग्राम में किए जाएंगे, और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक पोस्ट को लाइक को शेयर नहीं किया जल्दी से कर दिया करें, आप ही लोगों का काम होता है। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए जी, आप भी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। उनके अलावा हमारे साथ हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे टॉपिक अच्छा है लेकिन मेरे पास तो वाईफाई ही नहीं है, सो दुखी ये भी चीज है। और हारिस सुल्तान की भी नहीं आपके टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है जी, फिर तो जबरदस्त हो गया। और चाचा कहते हैं माई डॉटर लेन एनी लाइक पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट्स वाई शी पुट दैट इन। अच्छा 2014 में स्टिल अञा ताईं तव्हांजो इहो ई पासवर्ड हले पियो, न कयो बाबा न कयो, पासवर्ड चेंज कंदा रहंदा माण्हुनि खे डप पइजी वेंदी आहे न, पोइ बसि हशर हूंदो आहे। अच्छा मोहम्मद मीरन जकरानी में सुन रहे हैं जेका बाबा से, आपको भी वेलकम कहा जाता है, और हिदायतुल्लाह आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा। जुल्फकार अली जकरानी हमारे साथ हैं जेकब आबाद से, और क्या कहते हैं प्रोग्राम पसंद है आपका, थैंक यू सो मच, यहाँ की मोहब्बतें हैं। और हैप्पी कहती हैं आज ही अगर वाईफाई का कनेक्शन फीलिंग से होता तो मैं हैप्पी पासवर्ड रखती क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तो इसलिए मैं हैप्पी पासवर्ड रखती हूँ। टॉपिक आंसर ओके जी, समझ गए हम। और मीर तारिक बलोच कहते हैं काफी टाइम खां पोइ वरी तव्हांजे प्रोग्राम में शामिल थी आया हूं, थैंक यू सो मच, तव्हांखे चऊं था भली करे आया। अच्छा दिया कहती है कि मैं शामिल प्रोग्राम कमी होती हूँ लेकिन मैंने आपको बताया था, मैं चुपके से आपका शो सुनती रहती हूँ। मास्टर मंजूर का कोई भी अच्छा सा गाना डेडिकेट अली मुर्तजा, चलो इंटर्न हो गया, वैसे अली मुर्तजा भी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे। और ये हमारे साथ एहसन अली अरबानी मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप, मैं भी आ गया हूँ कुछ दिनों के बाद, आपको लगा होगा मैं नाराज हो गया हूँ लेकिन मैं मसरूफ था, नहीं नहीं आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते कि आप अच्छे बच्चे वो जो लोग नाराज होते ना वो बता कर जाते हैं, हाँ जी मैं नाराज आया मम्मा वना मैं तो माँ चंदिया सही वो तो ना रिठो भलो पर चण खां पोसाईंदो कख जो थोरो कंदो वरी वतंदो गाईंदो। सो जेके नाराज़ थियण जी जंहिंखे घणी आदत हूंदी आहे न, ऐं हू हर ॻाल्हि ते नाराज़ थी वेंदा आहिनि माण्हू, उहे बसि मां चवंदी आहियां ख़ुशि हुजनि ऐं साइड हुजनि, अहिड़ा माण्हू थोरो कुझु घटि पसंदि ईंदा आहिनि। और हिदायत लॻे थी सिदरा कराची जैसे शहर में बिजली नहीं आती, बिजली वालो को कोई बताए कि हमें गर्मी की परवाह नहीं लेकिन मोबाइल चार्जिंग करने दो, असल त बाबा इहा ॻाल्हि हूंदी आहे गर्मी जी हाणे कंहिंखे परवाह कोन्हे, बसि फोन चार्ज हुजे बसि पोइ असां लाइ सभु कुझु आहे। कराची में भी बिजली सही नथी हले बाबा, पोइ इहो त सही न आहे नी।

लाइक और शेयर करते जाइए, सभी को फॉलो कीजिए। और यहाँ पर सूफी वफा बलोच है, कहते कारू झर नंगल पार से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं पासवर्ड रखता चलो ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। रशीद कुलसुम सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आप जी हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। दिया कहती अली बहुत बिछाइए, हमें चांस भी गाल आए। चलो ये अच्छी बात है।

अच्छा जी, बातें तो सही थी, कोई मसले की बात ही नहीं. यहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हमारे साथ साथ हैं और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं. हाँ जी बताइए, अगर वाईफाई पासवर्ड आपकी फीलिंग से डिसाइड होता तो फिर आपका पासवर्ड क्या होने वाला था. एक और बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि भाई ये उमरानी की आवाज में गाना है, नया गाना आया है, तो मैंने सोचा चलो भाई एंजॉय करते हैं साथ में मिलकर.

साले सुल्तान की भी मुर्शिद इसकी जाना अभी भी क्यूट है भाई, मैं सोच रही थी सदा बहार जाना है, सदा बहार अच्छा दिया यदि रियो में की है माना पेट्रोल भराए जाना वर्डी विसरी वेंद्र सकी कहता है बाबा आने खोसो साहब की केर बुधाए अजकल सभी सिंधी गानन में जेन देगे रिवो साइड इश्क थी वियो।

आओ बाबा भले असा की छा गानो भलो हो बाबा भलो हो मजो आयो बुधो सी ऐसन कहते हैं माना इतबार अथव न असि अला करी हमेशा रहे हाँ एतरो टाइम थो तुम गुड आयो प्रोग्राम बुध पाया एतरी तो खबर पड़ी वेंदी इंसान की अगलो इंसान कड़ी किस्म जो कड़ी तबियत जो मालिक आ।

साईं वाह भलो गानो बुधो सुनो खे अलावा बे एकड़ो भलो गानो जे को बिल्कुल असा एंजॉय कना सी तमा जा मैसेजेस आयन बिल्कुल तमा से कचहरी हलन पयो प्रोग्राम तमा जो पंजवा से तमा से सगन मौजूद हुंदा आयो आई नखा इलावा

पोस्ट आई हुआ, पोस्ट खे लाइक एंड शेयर करना हलो। उन अलावा असा से गड मौजूद है पठान खान भाव। पठान खुशू भाई कहते हैं रजब फकीर जो गानों बुधराइंदा तमाम से ने पूरा मैसेज छो न पढ़ा हो तमाम जो पूरा मैसेज एतरो ही जो मुख्य मिलो वो पढ़ी वरतो से बाकी ही जो आयो सजो पढ़ो से जो हाँ तुम मोकलो है। मेरे को खास अब्दुल्ला माहिर हमारे साथ ही वालेकुम असलम बाजी शो नाई सा तुम सॉन्ग सुनाओ आपकी पसंद का चले डन हो गया। अच्छा जी खालिद असा से गड पैनल भी मौजूद आई चाचा ठीक है मुख्य लगो फेक अकाउंट हो ये मतलब बुधाए छींदा कर खबर हुए।

अच्छा डॉक्टर हसीना सोहो यदी असां अच्छा चलिए डॉक्टर साहब तुम गानों चो है बिल्कुल तुम गानों लाइन्स वो गानों चो जो मुख्य भी वणंद है सो तुम गानों बिल्कुल बुधंदा रसूल पासी आबिद हुसैन चंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम मेरा पासवर्ड नोट कीजिएगा गुस्से से आंखें मत दिखा और फिर मुस्कुरा देना अच्छा गुस्से से आंखें दिखाना और फिर मुस्कुरा देना यो पासवर्ड हो जाए आधे जो सही है बाबा सही है अच्छा गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी काम कुर्बानी भी खास के लिए भी समय प्रोग्राम बुधी पर भान जो मोबित हुआ है थैंक यू।

सभु चीज़ूं हिकु जॻह ते, पर असांजो फोन त असांजे हथ में आहे, उहा चीज़ असांखे ख़बर आहे त असांखे छा ॾिसण घुर्जे, छा न ॾिसण घुर्जे। हा हा, डांस करे हिदायत न, किसने मना किया आपको? हाले सुल्तान के लिए मुझे तो क्यूट जाना के सिवा कोई सॉन्ग समझ ही नहीं आया। ना करें भाई, सिंधी गाने लगा रही हूँ। अच्छा, अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, आपकी पसंद का गाना भी लगाया जाएगा। किशोर भाई कहते सलाम अता, सॉरी अख हाने खुलिया है। अच्छा, आज संडे यार, सही सही, सुकून कयो बाबा, सुकून कयो। उन खां अलावा तव्हांखे चवनि था भली करे आया प्रोग्राम में, तव्हांजो सॼो साथ पूरे पूरे टे बजे ताईं हूंदो। ऐं हिते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा। तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो। मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम
1: सखर सिंध का राज दुलारा शहर
2: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
1: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज जीए सखर एफएम 88 सखर की आवाज
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर एटीएन न्यूज।
3: कराची के मुख्तलिफ़ इलाक में मुख्तलिफ़ रोड हादसन में 8 जना हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाजार मलीर आयशा मंजिल बिन कासिम टाउन बियन इलाक में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिब कराची में हलंदड़ साल मुख्तलिफ़ रोड हादसन में 603 हयाती जया थी। 7,478 मानू जख्मी थे। फोत थियल शहरन जो अंग 184 है। कोटड़ीजी में हथियार के जोर से फुर दौरान मजामत नौजवान कतल वारसन पारा लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाप वट हथियारबंद नाकाबंदी कदे ईंदड़ वींदड़ गाडियन का फुर कई। मजामत खेरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मारजी वो संदस दोस्त जख्मी। वारसन पारा वाके वारे हंध लाश रखी धरणो। रोड ब्लॉक कातलन की फौरी गिरफ्तारी करण जो मुतालबो। प्रियालो भरसा कार इल्ज़ाम हेठ नौजवान नारी पीओ था कतल। जवाबदार फरार। गोठ इमाम बख्श नारे जो में जवाबदार आशिक नारे जो पांजे धी शकीला के कतल कर छो। इतलात हद की पुलिस वाके वारे हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कर छो। पीर जो गोठ वेझो बिन धुरन में झेड़ो फायरिंग नौजवान कतल। कोट पुल वारे इलाके में जागीरानी बिरादरी के बिन धुरन में हलंदड़ पुराने तकरार तां झेड़ो थी पियो। फायरिंग के नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीरानी मारजी वेयो। इतलात पुलिस वाके वारे हंध पहुंची नौजवान जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर छो। धुरन के झेड़े में इन वक्त तई 8 जना कतल थी चुका है। सखर में गुजरल डी कतल थियल नारी के वारसन जो कातलन की गिरफ्तारी लाय लाश रखी एहतजाज। नारी साजदा मीरानी के वारसन जवाबदार की गिरफ्तारी लाय एहतजाज कयो। वारसन जो चवण है तो साजदा मीरानी के संदस मुड़स अली हसन मीरानी कतल किया है। घरू अणत बणत जवाबदार असाजे न्याणी के कतल किया है। पुलिस जवाबदार की साथारी बणल है। डीआईजी सखर एसएसपी नोटिस वी कातल गिरफ्तार करे। मीरपुर माथेलो भरसा बेराम पुट माओ के घर अंदर जंजीरन से बधी छो। वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। गोठ कोड़ो खान लगारी में पीरसन औरत हुसैना लगारी के पत्थर दिल पुट असद लगारी जंजीरन से बधी छो। घर अंदर कैद जंजीरन से बधल औरत की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। औरत हुसैना लगारी चवण है तो पुट 5 डी जंजीरन से बधी छो है। सख्त तशद्दुद भी कन्द है। खेस जंजीरन में आजाद कराया वे। जरवार माइनर के मंगणहार पाड़े वटा 20 फुट घारो पानी घरन में दाखिल। इलाके वासन जो चवण है तो आपाशी अमलदार के इतला दिन बावजूद इन वक्त तई केर भी ना पहतो। घारो फौरी तौर से बंद कयो वे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मोरो नौशहरो मीरपुर खास।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: यार ताहिर, ख़ैर त आहे यार? तुंहिंजा वार विखरियल आहिनि, हाल उजड़ियल, ख़ैर त आहे यार?
5: बस भाउ अख़्तियार, कहिड़ा तूं सूर पुछी। सच इहो आहे त मूंखे इश्क बिल्कुलु तबाह करे छॾियो आहे यार। इश्क मुझा खंधा ही खनी छड़े
6: यार, असांगे त इश्क टेकाए छड़े आ।
5: बस भाव अख्तियार मुझे इश्क
7: अभी बुधो पे FM 91.6 आवाज सिंध जो आवाज बुधन।

फैजान जरा पाटिसन के गाने जो हमारी लिस्ट में मौजूद है तो उनको भी जरा सुन लेते हैं। फायज अली के गाने की फरमाइश हमें आ चुकी है और ये डॉक्टर हसीना साहिबा ने हमें गाने की फरमाइश कर दी है। काफी दिनों से डॉक्टर साहिबा ये गाना हम एंजॉय के साथ साथ मैसेजेस कर दिए हैं, सो थैंक यू।

अच्छा नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं। नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते लाजवाब प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। किशोर भाई कहते अरे अदा फीलिंग तो चेंज थी रही तो माना तभी पासवर्ड भी तो चेंज रो आ कद डिठो तो कंखे एक ही पासवर्ड हुए पर चाचा खाले चो तो असर 2014 का वी एक ही पासवर्ड है। यह चीज मुख्य थोड़ी मतलब अजीब लगी ये भी थी अच्छा पासवर्ड तो वाईफाई जो वह चीज है जी मू एक आई डी चेंज कह रो है सो बिल्कुल।

साईं चौथा, अगरि मुंहिंजी फीलिंग पुछो त हुन जो वाई फाई पासवर्ड ऑन इज वेल, ऑन इज वेल। इहो त तमामु सुठो थी वियो। और चाचा ख़ालिद कहते वाक़ई फ़ाइज़ा हक़ीक़त आहे, बिल्कुल बिल्कुल हक़ीक़त आहे। और मायरा असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई, वालेकुम अस्सलाम मायरा, कहती कैसी है? नाइस शो, थैंक यू वेरी मच मायरा। और कहती आज शाहिद बबर का गाना लगाइएगा, सलाम देना मोल और सब गर्ल्स को। चलेंगे ठीक है, सलाम आगे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हूँ।

0: कैसा महसूस हो रहा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: मुझसे बात कर।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सामने गाना है। यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, मुझे बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का हिस्सा है। और उसके अलावा बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी अच्छी गाने हमारी लिस्ट में है, तो जरा हम टाइम को वेस्ट किए बगैर एक और गाना आप लोगों को सुना देते हैं। ये होने वाला है जी नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, जिसकी फरमाइश हमें एक प्यारे भाई ने कर दी थी। तो इस गाने को भी साथ साथ एंजॉय

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा हम यहाँ पर गाना सुनेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं जी हरचंद राय कोहली, कुंडली का तमाशा के ज्वाइन कर हुआ है हरचंद राय कोहली एंड चोवन कुमार कोहली। सलाम नमस्ते जी, वालेकुम अस्सलाम, सदा सलामत हो जो असामी तमाम से गड गड आयो तमाम बेहतरीन प्रोग्राम हले पयो। सो थैंक यू सो मच प्यारे भांजो मोहब्बत एंड प्रोग्राम बुध पया। और सादिया थैंक यू सो मच तमाम से गड आयो। जाहिद अली बुर्दी भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। और किशोर भाई कहते अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर सात वचन लिए हैं तब जाकर पास बैठी है वो या भाभी आए अल्लाह।

چون دو هر گانه अचानक अच्छी शिरक कटाई हो आए ओके गाना बनो आप

दिल्ली का खालिक लाशारी हमारे साथ है दी है जो शो जहाज वांगे उड़ामे पयो मजो अची वयो बुद्धि थैंक यू सो मच प्यारा भाग तो मुखे लगे तो मुझे शो जगवा थोड़ो लाइट हुयो अलताफ जाग जानी चाचू ससे गड मौजूद है कहते हैं प्ले शमन दर्द दई वया दिलवारा मानू डेडिकेट अजरा खोसो बिस्मिल एंड यू चाचू तां थोड़ी देर करी आया प्रोग्राम में सवेरे चो तां जो गानो हलायो सो थैंक यू तां ससे गड मौजूद है प्रोग्राम बुधो पे

अच्छा ठीक ठीक तकरीबन सारे गानों में होता है ना, इसीलिए मैं सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या था, बीच में आ जाता है। अच्छा हैप्पी के लिए ओके जाना, बाय बाय, शाम के प्रोग्राम में बात करते हैं। ओके जी, शाम के प्रोग्राम में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अदो प्यारो अदो चेदो थैंक यू, तो मुझे हर दुआ में शामिल हूं दुआ है ये तो ताजो मोहब्बतों गुलाम करे चली दुआ है। हिते हिते गाना बुधण केर हूं दुआ है।

ओके सर, प्रोग्राम जो लास्ट ड्रिंक जो लगायो है लिस्ट में ही ओएसटी है, ओएसटी बुधासी उन अलावा इन ओएसटी से शायरी है जी शामिल प्रोग्राम कदासी। बिल्कुल प्रोग्राम तुम्हो है तवजो साथ जो पूरे टे बजे तीन होंगे डेली बेसिस से तवजो ही प्रोग्राम तवा तीन पहुंचाया वो है।

सुनो जाना हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना। आप मासूम हैं मोहताज रहें तो अच्छा है, आप मासूम हैं मोहताज रहें तो अच्छा है। बड़ा जालिम यहाँ ये जमाना है, एक फकर तेरे सिवा दुनिया मयसर है मुझे, एक फकर तेरे सिवा ये दुनिया मयसर है मुझे। उसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना, और इसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना। एक तरफा की मोहब्बत में अजियत है बहुत, सुनो एक तरफा की मोहब्बत में अजियत है बहुत, साथ उस दर्द के मुश्किल है गुजारा होना, साथ इस दर्द के मुश्किल है गुजारा होना। एन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, एन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना, यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना। हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना, अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना।

अला थैंक यू. यहाँ पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत. वरी तव से मुलाकात थे पर मुझे पंजे बजे वाले प्रोग्राम में. सो पांजो इलाही सरो ख्याल रखना. इन का गलती थी मुझे तो माजरत कहूंगा. सो मोकलानी नाए बाबू सन सलामत सा सलामत. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. लव यू ऑल.

0: جس اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
1: جی ایف ایم 91.6
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
0: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
1: Jildi Allergy aur Kharish ke liye mufeed hai
0: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News
4: Brought to you by
5: Sona Yuya Granular
6: रोड रस्ता पाणी हेठि केतिरनि इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो मुल्तान बनू सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति कराचीअ में मौसम जुड़ाली मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदी सभु मौसम ख़ुशगवार कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा सोल्जर बाज़ार मलीर आयशा मंज़िल बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा ट्रैफ़िक पुलिस मूजिबि कराचीअ में हलंदड़ मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं 7,467 माण्हू ज़ख़्मी थिया हेवी ट्रैफ़िक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंगु 184 आहे खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारीअ पारां रावलपिंडीअ में हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते ॾुख जो इज़हार हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते सोगवार ख़ानदान सां ताज़ियत ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार आसफा भुट्टो ज़रदारीअ चवण आहे त अफ़सोसनाक वाक़े जी मुकमल ऐं शफ़ाफ़ जांच कराई वञे ज़िमेवार माण्हुनि खे कानून जे मूजिबि अंजाम ताईं पहुचाए मिसाल क़ाइमु कई वञे औरतुनि जे तहफ़ुज़ ऐं ॾोहनि जे रोकथाम लाइ असराइता क़दम खणणु ताईं ज़रूरी आहिनि खेरपुर में मुसाफ़िर गाॾियुनि खां भतो वठण जी शिकायत ते ज़िले जा 19 पुलिस अहलकार मुअतल जांच जो हुकुम DIG सखर नासिर राबता पठाण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो मुअतल थियलनि में आसिफ शेख नादर घुनियो फ़हीम अब्बास मोहम्मद मुराद वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल ज़रियनि मूजिबि अहलकारनि खे मेराण हाईवे ते क़ाइम पॉइंट सां गाॾियुनि मां भतो वठण जे इल्ज़ाम सबबि मुअतल कयो वियो आहे सकरंड में ॿिनि ॿारनि खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर ॻोठ रामू किरियो वासी शाह ज़मान एहसान सोलंगीअ खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर कयो वियो हिकु महीने जे शाह ज़मान जी हिकु जंग ऐं पेर फिरी वञण सबबि वारसनि पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो 7 वरियनि जे एहसान अलीअ जो 2 साल अॻु पेर फिरी वियो वारसनि जो चवण आहे त ॿिन्ही ॿारनि जा जुज़ा वठी चकास लाइ लेबार्ट्रियूं माणिया वञनि कोटड़ीजीअ में हथियारनि जे ज़ोर ते फुर मज़ामत ते नौजवान क़तल वारसन पारां लाश रखी हुसैनाबाद स्टाप वटि धरणो हथियारबंदनि नाकाबंदी करे ईंदड़ वींदड़ गाॾियुनि खां फुर कई मज़ामत ते खेरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मारिजी वियो संदसि दोस्त ज़ख़्मी वारसन पारां वाके वारे हंधि लाश रखी धरणो रोड ब्लॉक कातिल फौरी गिरफ़्तार करण जो मुतालबो प्रियालो भरसां कार इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारीअ पीओ तां क़तल जवाबदार फरार ॻोठ मां बख़्श नारे जुमे जवाबदार आशिक नारे जे पंहिंजे धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो इतलाह ते हद जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो पीर जो ॻोठ वेझो ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो फायरिंग नौजवान क़तल कोट पुल वारे इलाइक़े में जागीराणी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां झेड़ो थी पियो फायरिंग जे नतीजे में नौजवान आसिफ़ अली जागीराणी मारिजी वियो इतलाह ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश इस्पताल मुंतकिल कयो धुरियुनि जे झेड़े में हिन वक़्त ताईं 8 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि सखर में गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल नारीअ जे वारसनि जो कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ लाश रखी एहतजाज नारी साजिदा मीराणीअ जे वारसनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ एहतजाज कयो वारसनि जो चवण आहे त साजिदा मीराणीअ खे संदसि मुड़ुसु अली हसन मीराणीअ क़तल कयो आहे। घरू अणत बणत तां जवाबदार असांजे नियाणीअ खे क़तल कयो आहे। पुलिस जवाबदारनि जी साथारी बणियल आहे। डीआईजी सखर ऐं एसएसपी नोटिस वठी कातल गिरफ़्तार कनि।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
8: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
9: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। जो आवाज
1: नहीं आहे।

0: एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: तहज़ीब सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
6: भारत तर्जमान इस्माइल बकई चयो आहे त पाकिस्तानी आर्मी चीफ जे दौरे जो मक़सद पाकिस्तान ऐं ईरान विच में लाॻापन खे वधीक मज़बूत करणु आहे। फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में अमन इस्तहकाम बाबति पाकिस्तानी कोशिशुनि जो तसलसल आहे। परडे॒ही मीडिया मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराची विच में फोन ते राब्तो थियो, जंहिं दौरान खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी नून लीग जे सदर नवाज शरीफ सां लाहौर में मुलाक़ात, मुल्क जे सियासी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। मुलाक़ात में पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिबि इसहाक़ डार बरतानवी दौरे ते परडे॒ही वज़ीर समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाकातुनि में सोमाला में यरगमाल पाकिस्तान जो मामलो थारियो वेंदो। ईरान ख़िलाफ़ अमरीका जी मुआशी जंग में मदद कंदड़ मुल्कनि जे मफ़ादनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरान जे क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसन रज़ाई चयो आहे त अमरीका पंहिंजी सफ़ारतकारी ऐं ॻाल्हियुनि सां धोखो कयो। पूरी दुनिया ॼाणे चुकी आहे त डोनाल्ड ट्रंप हिकु बेवकूफ़ शख़्स आहे। मका मुआदे बाबति सुवाल ते मोहसन रज़ाई चयो त मुआदे सां ज़ाहिर थिए थो त अमरीका इन्हनि मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो आहे त हू खितो छॾणु चाहे थो। ईरान जे सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त दुश्मन ईरान खे वेनेज़ुएला बणाइण जो सोचियो, पर ईरानी अवाम जे इतिहाद सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभरियो जंहिं दुनिया खे हैरान। रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद में गुज़िरियल तेज़ बरसाति सबबि केतिरा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। रोड रस्ता पाणी हेठि, केतिरनि इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनून, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबादीअ सबबि मौसम ख़ुशगवार। कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मली, रायशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिबि कराची में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं, 7,467 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफिक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंगु 184 आहे। खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारीअ पारां रावलपिंडीअ में हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते ॾुख जो इज़हार। हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते सोगवार ख़ानदान सां ताज़ियत ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। आसफा भुट्टो ज़रदारीअ जो चवणु आहे त अफ़सोसनाक वाके जी मुकमल ऐं शफ़ाफ़ जाच कराई वञे, ज़िमेवारनि माण्हुनि खे कानून मूजिबि अंजाम ताईं पहुचाए मिसाल क़ाइमु कई वञे। औरतुनि जे तहफ़ुज़ ऐं ॾोहनि जे रोकथाम लाइ असराइता क़दम खणण इंतिहाई ज़रूरी आहिनि। खेरपुर में मुसाफ़िर गॾु वठण जी शिकायत ते ज़िले जा 49 पुलिस अहलकार मुअतल। जांच जो हुकुम DIG सखर नासिर आफ़ताब पठाण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुअतल थियलनि में आसिफ़ शेख, नादर गुनियो, फ़हीम अब्बास, मोहम्मद मुराद, वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल। ज़रियनि मूजिबि अहलकारनि खे मेराण हाईवे ते क़ाइम पॉइंट स्पीकर सां गाॾियुनि मां भतो वठण जे इल्ज़ाम सां मुअतल कयो वियो आहे। सकरण में बिन बारन के पोलियो होजन जो शक जाहिर गोठ रहीम किरियो वासी शाह जमान एहसान सोलंगी के पोलियो होजन जो शक जाहिर कयो वयो। एक महीने के शाह जमान की एक जंग ए पेर फिरी वजन सबब वारसन पोलियो वायरस जो शक जाहिर कयो। सतन वर के एहसान अली जो ब साल अग पेर फिरी वयो। वारसन जो चवना है बिन्हीं बारन जा जुजा वी चकास ला लेबॉरेटरी माणिया वजन। कोटड़ीजी में हथियार के जोर से फुर दौरान मजामत नौजवान कतल वारसन पारा लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टॉप वट हथियार बंधन नाकाबंदी कर ईंदड़ वींदड़ गाड़ियों का फुर कई। मजामत खैरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मार वो संदस दोस्त जख्मी। वारसन पारा वाके वारे हंध लाश रखी धरणो रोड ब्लॉक कातिल फौरी गिरफ्तार करने जो मुतालबो। प्रियालो भरसा कार इल्जाम हेठ नौजवान नारी पी वथा कतल जवाबदार फरार। गोठ इमाम बख्श नारे जो में जवाबदार आशिक नारे जो पांजे धी शकीला के कतल करे छड़ियो। इतलाते हद जी पुलिस वाके वारे हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल करे छड़ियो। पीर जो गोठ वेझो बिन धुरन में झेड़ो फायरिंग नौजवान कतल। कोट पुल वारे इलाके में जागीरानी बिरादरी के बिन धुरन में हलंदड़ पुराने तकरार तां झेड़ो थी पियो। फायरिंग के नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीरानी मार जी वे। इतलाते पुलिस वाके वारे हंध पहुंची नौजवान जो लाश अस्पताल मुंतकिल करे छड़ियो। धुरन के झेड़े में इन वक्त तई अठ जणा कतल थी चुका है। सखर में गुजरल रियो कतल थियल नारी के वारसन जो कातिलन के गिरफ्तारी लाए लाश रखी एहतजाज। नारी साजिदा मीरानी के वारसन जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए एहतजाज कयो। वारसन जो चवण है त साजिदा मीरानी के संदस मुड़स अली हसन मीरानी कतल कयो है। घर अणत बणत जवाबदार असाजे नियाणी के कतल कयो है। पुलिस जवाबदारन की साथारी बणन लाए डीआईजी सखर ए एसएसपी नोटिस वठी कातिल गिरफ्तार कन। मीरपुर माथेलो भरसा बेरहम पुट माउ के घर अंदर जंजीरन से बधी छो। वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। गोट कोड़ो खान लगारी में पीरसन औरत हसीना लगारी के पत्थर दिल पुट असद लगारी जंजीरन से बधी छो। घर अंदर कैद जंजीरन से बधल औरत की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। औरत हसीना लगारी जो चवण है पुट पंजन ईन का जंजीरन से बधी छो है। सख्त तशद भी कन् खेस जंजीरन में आजाद कराया वे। नवाब शाह भरसा मेरान हाईवे ते तेज रफ्तार ट्रक जो रक्षा के टक्कर ब जणा फोत। बुछड़ी चौधगी वट हादसे में अनवर ए तनवीर खासकली फोत। पुलिस जो चवण है फोत जरवार माइनर के मंगणहार पाड़े वाले इलाके वासन जो चेतला डेण बावजूद इन वक्त ताई केर भी ना पातो। घारो फौरी तौर बंद कयो वे।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा

आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा, नहीं चल सकता। माँ तलाक याफ्ता हो ना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सौंगे उठाते हैं।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुजरियल तेज बरसात सबब केतरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। घोट रस्ता पाणी हेठि केतरनि इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनू, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसात। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदी सबब मौसम ख़ुशगवार। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, बलीर, आयशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफ़िक पुलिस मूजिबि कराची में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं, 7460 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफ़िक हादसनि में फोत थियल शहरियुनि जो अंगु 184 आहे। खातून अवल आस्था बुटो सरदारी पारां रावलपिंडी में हिना जावेद मुपैना कतल ते रुख जो इज़हार। हिना जावेद मुपैना कतल जे सोगवार ख़ानदान सां ताज़ियत ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। आस्था बुटो सरदारी जो चवणु आहे त अफ़सोसनाक वाक़िए जी मुकमल ऐं शफ़ाफ़ जांच कराई वञे, ज़िमेवार माण्हुनि खे कानून मूजिबि अंजाम ताईं पहुचाए मिसाल क़ाइम कयो वञे। औरतुनि जे तहफ़ ऐं दोहनि जी रोकथाम लाइ असाइता क़दम खणणु इंतिहाई ज़रूरी आहिनि।

0: उन्हनि जा पुलिस अहलकार मुअतल जांच जो हुकुम। डीआईजी सखर नासिर आफ़ताब पठाण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुअतल थियलनि में आसिफ शेख, नादिर गुनियो, फहीम अब्बास शहर, मोहम्मद मुराद, वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल। सरीअ मौजिब अहलकारनि खे मेहरान हाईवे ते क़ाइम पॉइंटनि तां गाॾियुनि मां भतो वठण जे इल्ज़ाम सबबि मुअतल कयो। पोलियो हुजण जो शख़्स आहे ॻोठ केरियो वासी शाह कयो वियो। हिकु महीने जे शाह ज़मान जी हिकु टंग ऐं पेर किरी वञण सबब वारिसन पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो। सत वरियन जे सां नदी जो ॿ साल अॻु पेर किरी वियो हो। वारिसन जो चवण आहे त ॿिन्ही ॿारनि जा जुज़ा वठी चकास लाइ लेबर डीजी में हथियारनि जे ज़ोर ते पुर दौरान वसामत ते नौजवान क़तल। वारिसन पारां लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाफ वटि हथियारबंदनि नाकाबंदी करे ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां पुर कई। वसामत ते खैरपुर वासी नौजवान मारिजी वियो। संदसि टोके वारे धरणो रोड ब्लॉक
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6
2: हक़त संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: तहज़ीब सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मेरे बाप ने अपनी पहली
1: अक्सर माण जो सवाल हूं असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उन के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उमर जी हद कोने कैम जगत वैक्सीन कैम उमर जे पोलियो लगी सके तो कैम उमर जे वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।

मेरे बाप ने अपनी पहली बेटी का फर्ज निभाने के लिए इनसे कर्जा ले लिया था, जिसके बदले में मेरा रिश्ता करके इनसे सौदा किया गया।

0: थे?
1: बेइंतहा।
0: वे गौहर के बारे में क्यों सोच रहे थे?
2: ये लड़की जोया कब से तुम्हारे हवासों पे छा गई है?
3: She makes me happy. जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान महसूस करता हूँ।
4: तुम मर्दों के पास बाहर एक यही एक्सक्यूज क्यों होता है?
5: मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ हालात का मुजरिम हूँ।
0: तुम्हारा नाम क्या है?
6: समीर।
1: समीर।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
3: कल औरत जी वीडियो सोशल मीडिया से वायरल औरत हसीना लगाई जो चवण आए तो पुत पंज दिन का जंजीरन सा बधी छो है सख्त तशद्दुद भी कंदो है केस जंजीरन मां आजाद कराए वे। नवाब शाहबर से मेहरान हाईवे से तेज रफ्तार ट्रक जो रिक्शा के टक्कर जणा पोत पिनेरी चौथी वट हादसे में अनवर तनवीर खास थैली पोत पुलिस चवण है पोत थी वियल पी पुट घोट साले खास थैली जहा रवासी लाश अस्पताल मुंतकिल कर। मालियों के इलाके इब्राहिम हैदरी में बिजली की बंदिश खिलाफ रवासियन जो के इलेक्ट्रिक ऑफिस अगर धरनो टायरन के बाइयू डेई रोड ब्लॉक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी मुजाहिन जो चवण है बिल भरण बावजूद बिजली बंद है जैसे पीण के पानी जो संगीन बहरान पैदा थी है बिजली बहाल न थी तो एहतजाज जारी रखो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अम्मा को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है कि मुझसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: मुझे ऊपर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बारे, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: कुमार मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएगा।
4: तो पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: आए दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मान नवाज धरती
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: 19 अप्रैल से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: ईरान ख़िलाफ़ अमरीका जी मुआशी जंग में मदद कंदड़ मुल्कनि जे मफ़ादनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीका पंहिंजी सिफ़ातकारी ऐं ॻाल्हियुनि सां धोखो कयो। पूरी दुनिया ॼाणे चुकी आहे त डोनाल्ड ट्रंप हिकु बेवकूफ़ शख़्स आहे। मका मुआहिदे बाबति सवाल ते मोहसिन रज़ाई चयो त मुआहिदे सां ज़ाहिर थिए थो त अमरीका इन्हनि मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो आहे त हू ख़ितो छॾणु चाहे थो। ईरान जे सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त दुश्मन ईरान खे वेनेज़ुएला बणाइण जो पर ईरानी अवाम जे इतिहाद सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभियो जंहिं दुनिया खे हैरान करे छॾियो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। पढ़ी तर्जुमान मूजिब इसहाक़ डार बरतानवी पढ़ी वज़ीर समेत ॿियनि आला मलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातनि में सोमालिया में यरतमाल पाकिस्तानियुनि जो मामिलो थारियो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। लाहौर में मुलाक़ात थी आहे। मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मुलाक़ात में पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी शरीफ़। जे यू आई एफ ए जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त दिफ़ाई ताक़त मुल्क ऐं रियासत जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान जी मज़बूत दिफ़ाई कुवत जा क़ाइल आहियूं। पिशावर में वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे मौलाना फज़ल रहमान चयो त आइन में आहे त क़ुरान ऐं सुनत जी रोशनी में ई आइन ठाहियो वेंदो। हुकमराननि जो आइन ते अमल न करणु उन्हनि जी कोताही आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई बानी पंहिंजी भेण नोरीन नियाज़ी सां मुलाक़ात में सुहेल आफरीदी या क़यादत बाबति का बि ॻाल्हि नाहे कई। नोरीन नियाज़ी मुलाक़ात मां ख़ुश हुई, कुझ ॻाल्हियूं ज़ाहिर नथियूं करे सघजनि। मुलाक़ात बाबति बेबुनियाद ख़बरूं अची रहियूं आहिनि। नोरीन नियाज़ी पीटीआई बानी खे मुलाक़ात दौरान कयल ॻाल्हियूं ॿाहिर न करण जी बि ख़ातिरी कराई हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िरियल रात तेज़ बरसात सबबि केतिरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। रोड रस्ता पाणी हेठि, केतिरनि इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनू, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसात। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदी सबबि मौसम ख़ुशगवार। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मलीर, आयशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफ़िक पुलिस मूजिब कराची में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में
1: सिंध से जुड़ी हफ़्ते भर की ख़बरें, तक़रीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तव्हां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा। हैदराबाद में हजारे माण्हुनि जो वहद ते सिंध मार्च, धरतीअ जे इंच इंच जी हिफाज़त कबी, अॻवाणनि जो ख़िताब। सिंध जा 6,220 स्कूल स्कूलनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। दादूअ में 3 महीननि जो ॿार 1.5 लख में। मीरपुर ख़ासि में 640 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती, IDs बि अलाट थी वियूं। हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओं मनसूबो, सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, पोरियतनि जी मेहनत, तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद।

सिद्ध एक्शन कमेटी पारा सिंध के विरागे वसीलन से वालार वारन साजिशन खिलाफ कल हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक सिंध मारे हजारे करे सिंध जो

ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। ही हुकमरान सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि। हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन ॾसमी तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हिनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरमत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी। शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि। ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन, मीरपुर ख़ास ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटुनि में हिननि जे मासूम ॿार खे मुबैना तौर 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद एस एक्शन पुलिस ॿार जे वालिद सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जांच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा, निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु मेराज खे मुबैना तौर हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाके खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौर नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिं खां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौर विकिरो कयो वियो। मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्त ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मासूम पुट जी वापसी जे लाइ दरबदर थी रही आहे। हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जांच कराई वञे, ॿार खे फौरी तौर बाज़ियाब कराए खेसि जे हवाले कयो वञे। शिकायत मिलण बाद एस एक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुसु सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जांच शुरू करे छॾी आहे। तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर। 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज़ बि अलाट कयूं वयूं। तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़त लिखी मीरपुर ख़ास में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करण ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे। उन सिलसिले में मीरपुर ख़ास ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख ख़ान, ज़ाहिद अली, अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौर ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिण अलाट कया विया। खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिण लॻायो। जाली बारकोड खां पोइ आईटी सेक्शन पारां जाली आईडी अलाट कई वई। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थियण खां पोइ खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़त लिखी जाली उस्तादनि जूं पघारूं रोकण ऐं वरितल पघारूं वापसि वठण जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि। जाली उस्तादनि जे पर्सनल आईडीज़ खे ब्लॉक कयो वियो आहे। स्कूल एजुकेशन खाते उस्तादनि जे जाली भर्ती कंदड़ कामोरनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नाहे कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे पंजाब में नओं वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफ़ाक़ी हुकूमत आॾो एतिराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक़ जे मुबैना बिटे मयार ते ख़दशे जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू कयो वञे। ज़रियनि मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिरा ई साल गुज़रण बावजूद ॿिन वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शोरो वधीक चयो त हिकु भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञकड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल्ह ठारू शाह जे अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में औरत 3 ॿारनि खे जनम ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशी जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह नौशरफ रोड लिंक रोड ते वाके अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम लाल दिलदार खंड 3 पुटनि खे जनम ॾिनो। जॾहिं पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौके ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सवेरे शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया।
लाड़काणू भरसा बकापुर था।

थाणे जे हद ॻोठु वॾामहर रोड ते चिंकीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिन ॼणनि उस्ताद मोहम्मद वासिण औरत ज़ाहिदा जमाली, मंठार जमाली ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाकिए वारे हंधु पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मीनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणो ट्रामा सेंटर मुंतकिल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं त ज़ख़्मीनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। उन मौके ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठु गाज़ी ख़ान जतोईअ में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास, भाउ जानिब जमाली, मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियारबंदनि चिंकीअ ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तलु करे मंठार ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जी DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाकिए जो नोटिस वठी मुलविस हथियारबंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदार ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाकियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिथे लाश घर पहुचण ते घर में कोराम अची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि, हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा मेहनत, वसीलनि, दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिण आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी, जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में ई मौजूदु रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था, उन्हनि खे उन दौलत ऐं फैसलनि में केतिरो हिसो हासिल आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फसल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखे किरोड़े पोरियतनि जी मेहनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिल कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूदु आहे। हिकु अकेलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इजतमाई ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन्हीअ करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरिहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिकु ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पुरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसी आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसलो रुगो उजरत जो मसलो न आहे, पर ज़मीन, पाणी, कुदरती वसीलनि, रोज़गार, तालीम, सिहत ऐं सकाफ़ती सुञाणप ऐं सियासी अख़्तियार सां बि ॻंढियल आहे। सिंध जी तारीख़ में हारियुनि, मज़दूरनि, माहिगीरनि ऐं ॿियनि महिनत कंदड़ तबक़नि जी जिदोजहद उन ॻाल्हि जो सबूत आहिनि त हीउ ख़ितो रुगो हुकुमराननि जी तारीख़ नाहे, पर अवाम ऐं पोरियतुनि जी जिदोजहद जी बि तारीख़ पिण आहे। आलमी सतह ते बि सनती इनकलाब खां पोइ मज़दूर तहरीकुनि 8 कलाक कम, मुनासिब उजरत, यूनियन ठाहिण, महफ़ूज़ कम करण वारो माहौल ऐं ॿियनि बुनियादी हक़नि जे लाइ डिघी जिदोजहद कई। पर अॼु जे दौर अॻु खां मुख़्तलिफ़ आहे। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशियत ऐं मसनूई ज़हानत पैदावार जा नवां दरवाज़ा खुलिया आहिनि। साॻे वक़्तु रोज़गार जी गैर यकीनी, ठेकेदारी निज़ाम, घटि उजरत, महांगाई ऐं दौलत जे वधंदड़ गैर बराबरी जहिड़ा मसला पिण मौजूदु आहिनि। अॼु पोरियत जो मतिलबु सिर्फ़ कारखाने में कमु कंदड़ मज़दूर न आहे। एप ते कमु कंदड़ ड्राइवर, डिलीवरी राइडर, ऑफिस जो मुलाज़िम, सहाफ़ी, उस्ताद, फ्रीलांसर, नंढो हारी, माहिगीर ऐं पंहिंजे मिनत सां गॾु सफ़र कंदड़ हर माण्हू जदीद पोरियत समाज जो हिसो आहे। उन ई करे अॼु जी ज़रूरत हिकु अहिड़े नए इजतमाई सोच जी आहे, जेका नफ़रत ऐं तशद्दुद बदिरां बराबरी, जमहूरियत, समाजी इंसाफ़ ऐं मुआशी हक़नि ते क़ाइमु हुजे।

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलह निगहबान।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: बुलंद की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुलंद रहो, बुलंद रहो।

0: दस्तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क सिर्फ।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ऊधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

सिंधराउ डबी अज अवां बुझी सकंदा। हैदराबाद में हजारे माण्हुनि जो वहद ते सिंध मार्च, धरतीअ जे इंच इंच जी हिफाज़त कबी, अॻवाणनि जो ख़िताब। सिंध जा 6,220 स्कूल ज़बून करार, पढ़ाई बंदि, शागिर्द मुतबादिल स्कूलनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। दादूअ में 3 महीननि जो ॿार 1.5 लख में मुबैना विकिरो, पीउ ते इल्ज़ाम, अमर जूं मीडिया आॾोदाहूं। मीरपुर खास में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती, आईडीज बि अलाट थी वयूं। हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओ मनसूबो, सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, पोरियतनि जी महिनत, तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद। सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो। मार्च वाधूवा रोड नसीब नगर चौक खां थींदो, वाधूवा गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो। मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी, कौमपरस्त ऐं तरक्की पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर, सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हया। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जो ही पहिरीं शुरूआत जो मरहलो आहे। सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। ही हुकमरान सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि। हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन ॾस में तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी। शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि। ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन, मीरपुर खास ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटनि में हिननि जे मासूम ॿार खे मुबैना तौर 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद एस एक्शन पुलिस ॿार जे वालिद सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जांच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा, निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुस सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना तौर हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाके खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौर नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिं खां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौर विकिरो कयो वियो। मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्त ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मासूम पुट जी वापसी जे लाइ दरबदर थी रही आहे। हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जांच कराई वञे, ॿार खे फौरी तौर बाज़ियाब कराए खेसि जे हवाले कयो वञे। शिकायत मिलण बाद एस सेक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुस सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जांच शुरू करे छॾी आहे। तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर, 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज बि अलाट कयूं वयूं। तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़त लिखी मीरपुर खास में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करण ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे। उन सिलसिले में मीरपुर खास ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख खान, ज़ाहिद अली, अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौर ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिण अलाट कया विया।
खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिन लगायो। जाली बारकोड का पोए आईटी सेक्शन पारा जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थन का पोए खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी जाली उस्ताद जो पगारू रोकण वर्तल पगारू वापस वठण जो हिदायत दिनों आन। जाली उस्ताद के पर्सनल आईडीज के ब्लॉक कयो वियो है। स्कूल एजुकेशन खाते उस्ताद के जाली भर्ती कंदड़ कामोरन खिलाफ का भी कार्रवाई ना कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे पंजाब में नओ वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफाकी हुकूमत आॾो एतराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक़ जे मुबैना ॿिटे मयार ते ख़सियत जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू कयो वञे। ज़रियन मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिरा ई साल गुज़रण बावजूद ॿिन वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शोरो वधीक चयो त हिकु भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञकड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल्ह ठारू शाह जे अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में औरत टिन ॿारनि खे जनम ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशी जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह शरफ़ रोज़ लिंक रोड ते वाक़े अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम लाल दिलदार खंड टिन पुटनि खे जनम ॾिनो। जिन पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौके ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सवे शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया। लाड़काणो भरिसां बकापुर थाणे जे हद ॻोठ वॾा महर रोड ते चिंकीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिन ॼणनि उस्ता मोहम्मद वासण औरत ज़ाहिदा जमाली मंठार जमाली ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाकिए वारे हंधि पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मीनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणो ट्रामा सेंटर मुंतकिल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं त ज़ख़्मीनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। उन मौके ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठ गाज़ी ख़ान जतोईअ में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास जानब जमाली मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियारबंदनि चिंकीअ ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तल करे मंठार ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जे DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाक़िए जो नोटिस वठी मुलविस हथियारबंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदार ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिथे लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम अची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा मेहनत वसीलनि दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिण आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में मौजूद रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था उन्हनि खे उन दौलत ऐं फैसलनि में केतिरो हिसो हासिल आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फसल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखे किरोड़े पोरियतनि जी मेहनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिल कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूद आहे। हिकु अकेलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इजतमाई ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन्हीअ करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिकु ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइ ते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पुरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसीउ आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसइलो रुगो उजरत जो मसइलो न आहे, पर ज़मीन, पाणी, कुदरती वसीलनि,
रोज़गार तालीम सिहत सकाफ़ती सुञाणप सियासी अख़्तियार सां बि ॻंढियल आहे। सिंध जी तारीख़ में हारियुनि मज़दूरनि माहिगीरनि ॿियनि महिनत कंदड़ तबक़नि जी जिदोजहद उन ॻाल्हि जो सबूत आहिनि त हीउ ख़ितो रुॻो हुकुमराननि जी तारीख़ नाहे पर अवाम पुरियतुनि जी जिदोजहद जी बि तारीख़ पिणु आहे। आलमी सतह ते बि सनती इनकलाब खां पोइ मज़दूर तहरीकुनि 8 कलाक कम, मुनासिब उजरत, यूनियन ठाहिण, महफ़ूज़ कम करण वारो माहौल ॿियनि बुनियादी हक़नि जे लाइ डिघी जिदोजहद कई। पर अॼु जे दौर अॻु खां मुख़्तलिफ़ आहे। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशियत मसनू ज़हानत पैदावार जा नवां दरवाज़ा खुलिया आहिनि। साॻे वक़्तु रोज़गार जी गैर यकीनी, ठेकेदारी निज़ाम, घटि उजरत, महांगाई दौलत जे वधंदड़ गैर बराबरी जहिड़ा मसला पिणु मौजूदु आहिनि। अॼु पोरियत जो मतिलबु सिर्फ़ कारखाने में कमु कंदड़ मज़दूर न आहे। ऐप ते कमु कंदड़ ड्राइवर, डिलीवरी राइडर, ऑफिस जो मुलाज़िम, सहाफ़ी, उस्ताद, फ्रीलांसर, नंढो हारी माहिगीर पंहिंजे महिनत सां गॾु सफ़र कंदड़ हर माण्हू जदीद पोरियत समाज जो हिसो आहे। उन ई करे अॼु जी ज़रूरत हिकु अहिड़े नए इजतमाई सोच जी आहे जेका नफ़रत तशद्दुद बदिरां बराबरी, जमहूरियत, समाजी इंसाफ़ मुआशी हक़नि ते क़ाइमु हुजे।

0: न्यू यो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिन इजाजत है अल्लाह निगहबान।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: دل فلان دیه باشم
1: خدا. دل جانے اتے جانے دل جانے اتے جانے دل جانے

रहा आहियां। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जी ही पहिरीं शुरूआति जो मरहलो आहे। सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। हीउ हुकमरान सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि। हिननि वधीक चयो त वहादत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा सिंध दुश्मन हुकमरान ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिब मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन समय तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हिनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी। शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे जिते ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंग बदीन मीरपुर खास ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटुनि में हिन जे मासूम ॿार खे मुबैना तौर 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद ए सेक्शन पुलिस ॿार जे वालिद सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जांच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु मेराज खे मुबैना तौर हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाकिए खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौर नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिंखां पोइ संदसि मासूम पुट

सेकेंडरी स्कूल टीचर जाली आईडी भी अलॉट कई व्यू तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी मीरपुर खास में भर्ती थियल छह सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली अनिल कुमार शाहरुख अली अरशद अली आबदा परवीन भर्ती कया व्यान जो भी स्कूल एजुकेशन उन भर्तीन के जालसाजी करार दिनो है। मजे की गाल उ जाली तौर ते भर्ती कल उस्ताद के पर्सनल आईडी नंबर पिण अलॉट कया व्या। खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिण लगायो। जाली बारकोड खां पोए आईटी सेक्शन पारा जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थण खां पोए खाते अकाउंट के खत लिखी जाली उस्ताद जो पगारू रोकण हिदायतू दिनियो। आईडीज के ब्लॉक कयो वियो आहे। स्कूल एजुकेशन खाते उस्ताद

0: इहो हो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।